0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഫാം ടു സിറ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം.

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
4: पुतला बोल रहे?
3: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
4: मतलब?
3: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ,
4: पर हम तो सभी डाले हैं।
3: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
4: सच
3: है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
4: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूंगा।
5: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंज वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए समाध फरमाए एक फिल्मी कवाली गीत, आवाजें हैं मोहम्मद रफी, मन्ना डे, एसडी बातिश, सुधा मल्होत्रा और साथियों की। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, संगीतकार हैं रोशन, फिल्म का नाम है बरसात की रात।

शायर इब्राहिम अश्क का कलाम समाप्त कीजिए गुलुकार तलत अजीज की आवाज में। मौसकी तरतीब दी है फिदा हुसैन ने, एल्बम का नाम है ये मिलन ख्वाब सा।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

आइए अब सुना जाए अगला गीत सुखविंदर सिंह, आनंदराज आनंद और कृष्णा की आवाजों में। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, संगीत है अजय अतुल का, फिल्म का नाम है अग्निपथ।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं मिश्रित संगीत का कार्यक्रम रंग तरंग। अगला एल्बम गीत है फाल्गुनी पाठक की आवाज में, गीत संगीत है ललित का।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्युलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।
3: रंग तरंग कार्यक्रम का अगला गैर फिल्मी एल्बम गीत सुनिए, गायक और संगीतकार अदनान समी की आवाज में। गीतकार हैं समीर, एल्बम का नाम है तेरा चेहरा।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अगली गजल समाप्त कीजिए गायक और संगीतकार चंदन दास की आवाज में। कलाम है इब्राहिम अश्क का।
3: फिर मेरे दिल पे किसी दर्द ने करवट ली है,

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में। कलाम है इब्ने इंशा का।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। साथियों, आज यादों की महफिल में हम आपको सुनवाएंगे कुछ सदाबहार यादगार फिल्मी गीत। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी का लिखा गीत है, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार।

कार्यक्रम है यादों की महफिल और इस महफिल का झिलमिलाता हुआ अगला गीत है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है जीवन मृत्यु।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत है आशा भोसले की आवाज में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है राहुल देव बर्मन और फिल्म का नाम है द ग्रेट गैम्बलर।

हसरत जयपुरी का लिखा गीत सुनिए मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम है सूरज।

0: गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे।
1: किराना अथवा कैराना, सहरानपुर उत्तर प्रदेश कुरुक्षेत्र के पास एक छोटा सा गांव है। इस नाम से घराने को ये नाम भी मिल गया, ऐसा कहते हैं।
0: अवश्य सुनिए 1 सितंबर से संगीत सरिता में नई श्रृंखला, स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, सुबह और शाम 6:45 पर, सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम की अगली रचना है हसरत जयपुरी की, संगीत रचना है कल्याण जी आनंद जी की। इस गीत में आवाजें आप सुनेंगे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की। फिल्म का नाम है गीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल में आज हम और आप मिलकर सुन रहे हैं कुछ सदाबहार यादगार फिल्मी नगमात। तो अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, गीत है आनंद बख्शी का। गीत को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है दो रास्ते।

लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में। नगमा निगार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, फिल्म का नाम है उजाला।

आइए अब सुना जाए वो गीत जिसे संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने। गीत के बोलों को लिखा है हसरत जयपुरी ने। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है, और इस गीत में आवाज आप सुनेंगे मोहम्मद रफी की।

लीजिए सुनिए संगीतकार रोशन के संगीत से रोशन ये कवाली गीत, आवाजें हैं मन्ना डे मोहम्मद रफी और साथियों की, शायर हैं साहिर लुधियानवी, फिल्म का नाम है बहू बेगम।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शकील बदायूनी, संगीत है हेमंत कुमार का, फिल्म का नाम है साहिब बीबी और गुलाम।

यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीला सफर कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। वैसे दोस्तों, अब तक तो आपको पता चल ही चुका होगा कि हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम सुनने के लिए जरा इबारत ध्यान से सुन लीजिए। वैसे तो जो श्रोता फेसबुक पेज पर उपलब्ध हैं, जुड़े हुए हैं, तो उन्हें पता होगा, लेकिन जो लोग फेसबुक पेज पर नहीं हैं, उनके लिए हम इबारत जरा पढ़कर सुना देते हैं। जिंदगी में मिलती है जो मोहब्बत की घड़ी, तो दिल नील गगन की सैर करता है। वो पुरानी यादों की ही मेहरबानी है।

हो गए हमार, तब भी वही पुरानी हंसी याद आ जाती है जो कभी लाल लाल होठों से छलकती थी, मतलब लाल लाल होठुआ से छलकती थी। यहाँ पर कौन सा गाना याद आया आपको? कोई लोकगीत है याद कीजिए, फिल्मी लोकगीत, तलत महमूद की आवाज है। हमने हिंट भी दे दिया, पर आखिर में जब मन थकता है तो भक्ति ही सहारा बनती है। हे गंगा मैया तुहे पियरी चढ़ेबो, ये आस हमेशा रहेगी कि गंगा मैया में जब तक पावन धार बहेगी प्रीत अमर रहेगी। मतलब गंगा मैया में जब तक, आगे बताइएगा। घाट पर ढलती शाम में जैसे कोई पुकारता है, नदी नारे न जाओ शाम, पर लहरों के सन्नाटे में बस यही मलाल रह जाता है कि नदिया किनारे हेराई आई कंगना। जो छूट गया वो समय की धारा में बह गया, पर उसकी सुरमई गूंज आज भी यही ठहरी हुई है। अब जरा बताइए, अभी तक तो आपने इबारत पढ़ी थी, अब जब इबारत अपने आप से पढ़ी थी, जब मेरे मुंह से सुनी ये इबारत तो आपके भीतर कुछ अलग भाव भी पैदा हुए होंगे। अब बहुत सारे भाव हैं इसमें, तो अब उन शब्दों को याद कीजिए जिन शब्दों से गाने आपके जहन में इस समय आ रहे हैं। और हाँ, बहुत सारे श्रोता नदी के बारे में लिख रहे हैं, तो हाँ नदी तो है इस शब्द में, नदी वाले कौन से गाने आपके जहन में वो भी बताइए। और ये भी बताइए कि किस नदी के किनारे आपका घर है, मतलब आपके शहर में कौन सी नदी बहती है, आपके गाँव में कौन सी नदी बहती है, ये भी बताते चलिए। और हाँ, ये जो बातें हैं गंगा मैया की बात भी इसमें है, गंगा मैया वाले कौन से गाने हैं वो जरा साझा कीजिए, और गंगा मैया से जुड़ी कौन सी याद है आपके भीतर। चलिए अब यादें और बातें साझा करते रहिए, लेकिन अब जरा सुनिए गाना और पहले भी बूझिए कि इस गाने में कौन है हीरो और कौन है हीरोइन। फिल्म आंखें, जिन्हें हीरो हीरोइन का नाम नहीं पता वो बता दें गीतकार संगीतकार का नाम। आंखें फिल्म का गाना, फटाफट बताइए हीरो हीरोइन का नाम।

आंखें फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज, साहिर लुधियानवी के बोल, रवि का संगीत था और हीरो हीरोइन माला सिन्हा और धर्मेंद्र। हमारे श्रोताओं ने बहुत त्वरित जवाब दिया और सही जवाब दिया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे नागपुर शहर के बगल में 15 किलोमीटर पर कान्हा नदी बहती है, और लेकिन बाकी किसी श्रोता ने अब तक नहीं लिखा कि उनका शहर या उनका घर गांव किस नदी के किनारे है। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि बिल्कुल यही कला है पाठन की जो आपको बाकी से अलग करती है। आज की पहली जब आपके मुंह से सुनी तो गीतों की श्रृंखला बनती चली गई। गंगा मैया को इस गीत से याद करते हैं, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। और एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे घर से थोड़ी ही दूर कुंदा नदी है, निमाड़ में मां नर्मदा भी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि धर्मेंद्र और माला सिन्हा, गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि, बिल्कुल सही लिखा। अरे एक श्रोता ने और लिखा, मेरे इधर कावेरी नदी है। वैसे नदी के किनारे अगर घर है, शहर है, गांव है, तो कितना अच्छा लगता है जब आप अकेलेपन से उबे या ठंडी हवा, एकदम प्राकृतिक कुदरती हवा चाहें तो नदी के किनारे चले जाएं, बस यूं ही बैठे रहें, खुद से बातें करें, खुद से गुफ्तगू करें और इसका आनंद अवश्य लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, अरे कौन जाए वहां तक घूमने टहलने के लिए, चलो मोबाइल में उतना समय बिता लेते हैं। तो ये जो मन का जो भटकाव है, इससे बचना चाहिए। जब आप कुदरत के नजदीक जाते हैं तो आपके भीतर भावनाओं का ज्वार होता है, आपकी संवेदनशीलता बढ़ती है और आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। बहरहाल जरा हम श्रोताओं की टिप्पणियों पर आ जाएं। हमारे श्रोता जो लिख रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा दें। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, आज की इबारत तो शब्दों का गुलदस्ता है जिसे पढ़ते ही मन में पुराने सदाबहार गानों की महफिल सज गई है। इस जादुई लिखावट में छुपे कुछ बेहद प्यारे गाने सीधे दिल को छू रहे हैं, जिन्हें आज दोपहर 1 बजे सुनने का इंतजार रहेगा। नील गगन की सैर करता है याद आता है फिल्म आम्रपाली का वो खूबसूरत गाना, नील गगन के तले। और एक श्रोता ने लिखा है कि रिमझिम के ये प्यारे प्यारे लम्हे सुनते ही कानों में रस घोलता है, रिमझिम के तराने लेकर आई बरसात। और आगे लिखा है, ऐ संदली हवा तू कहां ये बता, फिर सीधे जोड़ता है इस नगमे में, पूरी इस हमारी इबारत को गानों से इन्होंने जोड़ दिया है। और अंत में ये भी लिखा है, चंपा कली देखो झुकी जाए, किशोरदा की शरारती आवाज। और कुछ श्रोता ने लिखा है कि वाह भाई, मेरी 10-12 गानों में से पहला गाना ही शामिल हो गया। गनीमत है कि आपने शिकायत नहीं की कि मेरी पसंद का गाना शामिल नहीं हुआ। चलिए, हो सकता है आपका गाना शामिल हो जाए, मतलब आप सभी में से। तो आप अपनी पसंद लिखते रहिए और ये है हमारी पसंद और आप सबकी पसंद। बताइए जरा, गीतकार और संगीतकार का नाम, गीतकार संगीतकार का नाम आपको बूझना, फिल्म उसने कहा था और रिमझिम बरसात से जुड़ी हुई कोई खास बात है वो भी साझा कीजिए आप।

भाई आज तो गानों की बहार सी आई हुई है। विविध भारती के फेसबुक पेज पर हमारे श्रोताओं की ओर से एक से बढ़कर एक गाने आ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है नदी नारे न जाओ श्याम पैया पढ़ूं, और एक श्रोता ने लिखा है कि साहिल लुधियानी और रवि, शायद ये अगले गाने के लिए लिख रहे हैं। और हमने आपसे पूछा था, उसने कहा था फिल्म में गीतकार संगीतकार कौन है, शैलेंद्र और सलील चौधरी, लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें हैं। एक श्रोता ने नदी के लिए लिखा है, हमने पूछा था आपसे कि आपका शहर या गांव किस नदी के किनारे बसा है या आपके घर के पास कौन सी नदी है। हमारे श्रोता ने लिखा है गंगा बनारस शहर। एक श्रोता ने लिखा है ओ गंगा आए कहां से, गंगा जाए कहां से, मचलती हुए हमारे संग संग चली गंगा की लहरें, क्या बात है। बहुत सारे गाने हमारे श्रोता हमें याद दिला रहे हैं। हालांकि ये सारे गाने हमारे जहन में हैं, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है कि इतने सारे गाने आपको याद आ रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे घर या गांव के पास नदी नहीं है, बहुत दूर है वो। और एक श्रोता कहते हैं कि गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे। एक श्रोता ने लिखा है गंगा सबकी मैया है, हमारे घर में जब नई बहू आती है तो सबसे पहले उसे गंगा मैया की पूजा करवाने ले जाते हैं। पीली साड़ी मांग में पीला सिंदूर, पीला नहीं बल्कि उसको मटिया सिंदूर बोलते हैं जो नारंगी रंग का होता है। और बहू को गंगा जी के किनारे पीली साड़ी से ही गंगा मैया की पूजा की जाती है और अपना आंचल फैलाकर सुहाग मांगती हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं तो

बनारस से हूँ, वहाँ गंगा नदी है। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे तो जबलपुर में माँ नर्मदा जी हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा मायका सांगली है, वहाँ कृष्णा नदी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे शहर चित्तौड़गढ़ में दो नदियां हैं, एक का नाम गंभीरी और दूसरी का नाम बीडच नदी। गंभीरी नदी प्रसिद्ध नदी है जो पन्ना धाय के समय प्रसिद्ध हुई थी, जहां पर उदय सिंह जी को छुपाया गया था। वही नदियों के बारे में अगर आपको भी कोई जानकारी है तो आप भी साझा कर सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे घर के पास नदी तो नहीं है, लेकिन डैम 3-4 है, वो भी जंगल पहाड़ से घिरे हुए। और एक श्रोता कहते हैं कि मेरे खंडवा शहर में छोटी आबना और बड़ी आबना नदी बहती है, वही 60 किलोमीटर दूर माँ नर्मदा बहती है। छोटी और बड़ी आबना जहां खंडवा का स्थानीय जल ढांचा बनाती है, वहीं माँ नर्मदा पूरे अंचल की आध्यात्मिक, आर्थिक और जीवनदायिनी शक्ति है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं लखनऊ की हूं तो वहां गोमती नदी बहती है, और कानपुर ससुराल है तो यहां गंगा नदी बहती है जो बहुत पवित्र मानी जाती है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे यहां नर्मदा नदी क्योंकि हम MP वाले हैं। और एक श्रोता कहते हैं कि ओ बसंती पवन पागल, आह रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत, तू कहां ये बता, चंपा कली देखो नदिया किनारे है राई, आई कंगना मैं न भूलूंगा मैं न भूलूंगी, सुरमई शाम, इस तरह से आए। बहुत सारे श्रोताओं ने आज इस तरह से गाने लिख भेजे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि तलत महमूद का जिक्र तो किया लेकिन तलत महमूद का गाया हुआ गाना आप लोग सुनाते ही नहीं है। तो अभी जो गाना सुनवाया था फिल्म उसने कहा था, उसमें भी तलत महमूद की आवाज थी। अब चलिए ये गाना भी सुनिए, जरा देखिए किसकी आवाज है और हमें गीतकार संगीतकार का नाम जरूर बताइए। फिल्म का नाम हम बता रहे हैं, लागी नहीं छूटे रामा। गीतकार संगीतकार का नाम आपको बूझना है।

तो भाई आप बताइए कि आवाज किसकी है, लता मंगेशकर की आवाज है और दूसरी वाली आवाज किसकी है? तो आपकी शिकायत दूर हुई या नहीं?

लागी नहीं छूटे रामा फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें थी। गीतकार संगीतकार का नाम हमने पूछा था मजरूह सुल्तानपुरी चित्रगुप्त। सभी श्रोताओं ने लगभग सही बताया, कुछ एक श्रोताओं ने गलत जवाब भी दिया, कोई बात नहीं। और आपने जवाब दिया और इस प्रोग्राम से जुड़े हुए ये जानकर हमें अच्छा लग रहा है। एक श्रोता ने लिखा है कि सुरीला सफर में भोजपुरी गीत सुनकर अच्छा लगा। दरअसल ये लोकगीत हैं और जब हम लोकगीत सुनते हैं तो अपने अपने अंचल को याद करते हैं, अपने अपने गांव की मिट्टी को याद करते हैं। लोकगीतों में बसी होती है सौंधी मिट्टी की सुगंध। तो आप अपने गांव को याद कर सकते हैं, कौन सी वो बात है जो शहर में रहते हुए गांव को मिस करते हैं आप, और कितने बरस हो गए अपने गांव गए हुए। और बात नदी की चल रही थी, बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि हमारा गांव या शहर इस नदी के किनारे। जैसे हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरे घर के नजदीक त्रिमुहानी नदी, गंडक नदी आदि बहती है। तो जरा बताइए कि पिछले दिनों आप कब नदी के किनारे गए थे और सिर्फ घूमने के मकसद से गए हों नदी के किनारे। एक समय था जब नदी के किनारे जाकर पानी भर के लाया जाता था। हालांकि आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो इंटीरियर में हैं, जहां पर नदी से घड़े में पानी भरकर लड़कियां और महिलाएं सिर पर रखकर ले जाती हैं, वहां पानी की किल्लत भी बहुत सारी है। तो आज जब ये बात चली है तो यहां पर एक ये संदेश भी देना जरूरी है कि पानी बहुत कीमती है, पानी की बचत भी बहुत जरूरी है। जब आप पानी बहाते हैं, वेस्ट करते हैं, तो याद रखें कि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर दूर दूर नदी के किनारे से, नदियों से पानी भर के लोग सिर पर रखकर घड़ा ले जाते हैं। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि नदी के द्वीप अज्ञेय जी द्वारा लिखी गई कविता है। द्वीप व्यक्ति का प्रतीक और नदी समाज या व्यापक प्रवाह का व्यक्ति समाज से ही आकार पाता है। व्यक्ति और समाज के बीच संबंधों को दर्शाती है नदी। नदियों को हम मां समान पूजते हैं, फिर भी नदी की स्वच्छता के बारे में जागरूकता नहीं है। आप किस तरह से जागरूकता फैलाते हैं, क्या संदेश देते हैं अपने बच्चों को, क्या कहते हैं, क्या सिखाते हैं, क्या कभी नदी के किनारे उन्हें ले जाकर घुमाते हैं या सिर्फ मॉल या और फिल्में सिनेमा दिखाने ले जाते हैं या फिर पार्क में ही ले जाते हैं, नदी के किनारे ले जाते हैं, ये भी आप हमें बताइए। एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन में प्रेम के पल, पुरानी यादें और सावन का मौसम मन को असीम आनंद देता है। संकट या जीवन के अंतिम पड़ाव में ईश्वर की भक्ति ही सच्चा सहारा बनती है जो प्रेम को अमर रखती है। बीता हुआ समय भले ही वापस नहीं आता लेकिन उसकी खूबसूरत यादें हमेशा दिल में दस्तक देती है। ओ बसंती पवन पागल। और इस गाने को बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, मतलब इस गाने की एक तरह से फरमाइश लिख भेजी है हमारे श्रोताओं ने। तो चलिए हम यही गाना सुन लेते हैं, लेकिन हमारी पहेली भी है शामिल। तो पहेली का जवाब दीजिए कि कौन है इस फिल्म में कलाकार और कहां पर फिल्माया गया है ये गाना, फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। गीतकार संगीतकार का नाम भी आप बता सकते हैं। गाना कहाँ फिल्माया गया है, किस जगह पर, किस शहर में, ये भी आप बता सकते हैं।

ओ बसंती पवन पागल फिल्म जिस देश में गंगा बहती है लता मंगेशकर की आवाज थी। गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन। ये सवाल भी हमने पूछा था और हीरो हीरोइन का नाम भी पूछा था, पद्मिनी और राज कपूर। और ये भी हमने पूछा था कि कहां पर ये गाना फिल्माया गया है। सभी श्रोताओं ने क्या, बहुत ज्यादा तादाद में श्रोताओं ने जवाब सही दिया, जबलपुर के भेड़ाघाट में फिल्माया गया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बदलते मौसम के साथ ये नदियों की चाल भी बदल जाती है। जब बारिश आती है तो जमीन बदल जाती है, गर्मी से सूखे तालाबों में पानी का गलीचा बिछ जाता है। मौसम कोई भी हो वो अपने प्रकृति प्रदत्त स्वभाव में रहता है, इसलिए मौसम के साथ छल छद्म करने का कोई काम नहीं। बारिश में नदी की लहरें अपने उफान पर रहती हैं और लहरों के वेग में भी संगीत का तरन्नुम हवाओं में तिरता रहता है। मौसम का जादू आधा आसमान में खिलता है और आधा जमीन में। शायर बशीर बद्री के माध्यम से कहें तो अजब मौसम है, मेरे हर कदम पर फूल रखता है, मोहब्बत में मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है।

0: अब एक श्रोता ने लिखा है कि गांव दूर है शहर से 40 किलोमीटर, सड़कें आ गई इसलिए आते जाते रहते हैं। और हमने आपसे पूछा था कि नदी की बातें आप सभी ने लिखी हैं, तो आप सब में से कौन वो लोग हैं जो अक्सर नदी के किनारे जाते हैं, बैठते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, घुमाते हैं और उनसे नदी के बारे में बातें करते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बरसात होती है तब मन चाहता है ऊपर के कमरे में खिड़की खोल दें, एकांत हो, रिमझिम बूंदे शरीर पर पड़े और भूतकाल में मन कहीं खो जाए, उन कभी न भुलाए जाने वाले पलों में एक बार फिर खो जाए। काश कि ऐसा होता कि उन पलों के समय ही हमें ये पता होता कि आने वाली जिंदगी के लिए ये ही पल अविस्मरणीय है, लेकिन हमारी जिंदगी वास्तविकता कुछ और ही है। जिंदगी में कभी भी समय एक सा नहीं रहता है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन बात नदियों की बहुत ज्यादा हो रही है, हमारे श्रोता नदियों की बातें कर रहे हैं और नदी वाले गाने भी लिख रहे हैं, तो चलिए ये गाना सुन लिया जाए। आपको बूझना है किसकी है आवाज और कौन है गीतकार और संगीतकार। फिल्म मुझे जीने दो।
1: नदी ना

मुझे जीने दो फिल्म का गाना था, आशा भोसले की आवाज थी, साहिल लुधियानवी के बोल थे, जयदेव का संगीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब सही दिया है। एक श्रोता ने लिखा है कि ऐसा लग रहा है कि आज लंबे शीर्षक वाली फिल्मों के गाने शामिल किए गए हैं। अब ये तो आप अंदाजा लगा रहे हैं। बहरहाल बहुत सारे श्रोता जो गाने लिख रहे हैं, आज हम वो गाने चुन चुनकर बजा रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका गाना शामिल हो तो आप लिखिए अपनी पसंद इस प्रोग्राम में। एक श्रोता ने लिखा है कि भई आज तो हमारे घर पे मेहमान आए हैं और हम खूब मस्ती के साथ सुन रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गांव आज भी बहुत भाता है, पर गांव में आज भी बहुत सारी बेसिक सुविधाएं नहीं, खासकर अगर सीनियर सिटीजन है तो बड़ी मुश्किल होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे घर के नजदीक त्रिमुहानी नदी, गंडक नदी वगैरह बहती है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि हमारे शहर से जीवन दायिनी माँ नर्मदा नदी गुजरती है, जो अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी में लगभग 1380 किलोमीटर लंबी यात्रा करती हैं। पुराणों में कहा गया है कि नर्मदा नदी के दर्शन मात्र से पाप धुल जाते हैं। एक श्रोता ने गानों की फरमाइश, बहुत सारे गानों की फेहरिस्त लिखी। एक श्रोता लिख रहे हैं कि जब नदियों की बात चली है तो आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के धार जिले में एक नदी बहती है, उसका नाम वाघ है। वहां के पानी में तांबा मिला हुआ रहता है, इस कारण वहां पर भारत का प्रसिद्ध बाघ प्रिंट का काम किया जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज से करीब 10 साल पहले हम घूमने गए थे, जब वहां से लौट रहे थे तो बहुत जोरों की बारिश होने लगी। हम घंटों इंतजार करने लगे कि पत्तों की सरसराहट हो, बिजली का चमकना, पानी की बूंदें टप टप कर गिरी। जब भी बारिश का मौसम आता है तो वो दिन याद आ जाता है। और मेरे शहर के पास गंगा नदी बहती है, और गंगा नदी पवित्र नदी मानी जाती है। बहुत सारे श्रोता ये लिख रहे हैं कि हमारे घर के पास कौन सी नदी बहती है। और अब लेकिन हम यहाँ पर नदी का गाना तो लेकर आए हैं, और बहुत सारे श्रोता भी नदी वाला गाना लेकर आए हैं, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा विषयांतर करते हैं और आपको वो गाना सुनाते हैं जो आपको अपने बचपन की ओर ले जाएगा। एक तरीका है, कुछ बातें माँ सिखाती हैं कि ईमानदारी से रहो, झूठ मत बोलो, और नैतिकता की बातें माँ पिता सिखाते हैं। लेकिन बचपन में एक जो कमाल की बात होती है वो झूठ बोलना, कोई इससे वंचित नहीं रह पाता है। कभी शक्कर चुरा के खा लिया तो झूठ बोलना पड़ा, कभी पाउडर वाला दूध चुरा लिया तो आपको झूठ बोलना पड़ता है, कभी बहुत सारे लोग चुपके से फिल्म देखने चले जाते हैं तो झूठ बोलना पड़ता है, कई बार कहीं पैसे रखे हैं वो चुरा के आपने कुछ चाट चटपटे खा लिए। तो ऐसी कौन सी घटना है आपके जीवन में, आपके बचपन में, वो जरा बताइए बेबाकी से और ईमानदारी से बताइएगा कि कब, किस लम्हे में, किस घड़ी में आपने झूठ बोला। तीसरी कसम फिल्म का गाना है, झूठ मत बोलो ये कह रहे हैं, लेकिन आप झूठ वाली बात जरूर बताइए। मुकेश की आवाज।

इस गाड़ी में, इस फिल्म में गाड़ी पर बैठकर कौन है हीरोइन और कौन है हीरो बैठकर जा रहे हैं बताइए। बैलगाड़ी में बैठे हैं हीरो हीरोइन, नाम आपको पूछना है। और साथ में वो झूठ वाली बात भी बताइएगा कि कब झूठ बोला था और डांट पड़ी थी कि नहीं।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, मेरे बाबूजी का बहुत पसंदीदा गीत था, कहते थे कि ये निर्गुण है। और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब सही दिया है, बैलगाड़ी में राज कपूर और वहीदा रहमान है। और जरा ये बताइए कि ये फिल्म किस रचनाकार की रचना पर आधारित थी, किस उपन्यासकार के उपन्यास पर आधारित थी ये फिल्म। और एक श्रोता की टिप्पणी है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बनारस के 80 घाट के पास रहता हूं, जब भी मन में आता है गंगा जी निहारने चला जाता हूं और बहुत सुकून मिलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे पुणे में मुला मुठा नदियों का संगम है, उपनगरों में पौना राम नदियां हैं। अब बात गंगा जी के

हारने की चली है, तो चलिए वो गंगा वाला गाना ही सुन लेते हैं, जो आप सबका पसंदीदा गाना भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है। लेकिन जरा पहले बूझिए, गीतकार और संगीतकार का नाम बताइए। और हाँ, हमने पूछा था कि जो अभी गाना सुनवाया, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ये बात तो हमें सिखाई जाती है, लेकिन बचपन बड़ा भोला मासूम होता है, वहां ये बात नहीं पता चलती है, नहीं चलती है। तो कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए आपने झूठ बोला और डांट खाई, ये भी बताइएगा ईमानदारी से। फिलहाल ये गाना जिसके लिए बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है।

ये फिल्म थी फणीश्वर नाथ रेणु की कृति मारे गए गुलफाम पर आधारित ये फिल्म थी और ये हमारा सवाल था गंगा मैया। ये तीसरी कसम फिल्म के लिए जो सवाल पूछा था उसके लिए था ये जवाब। और अभी जो गाना आप सुन रहे थे गंगा मैया तो है पियरी चढ़ई वो, इसमें हमने आपसे गीतकार और संगीतकार का नाम पूछा था। श्रोताओं की ओर से इसका भी जवाब सही आया है शैलेन्द्र और चित्रगुप्त। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार मैं जब छोटी थी तो दीदी के बच्चे के लिए मिल्क पाउडर और सेरेलेक रखा रहता था जो चोरी करके मैं खा जाती थी। मम्मी डांटती थी पर दीदी ने समझाया कि ये छोटू बेबी का है, फिर अलग से वो मुझे भी खाने देती थी। और ये जो चोरी है दूध पाउडर या सेरेलेक तो मुंह पर लगा रह जाता था तो जब आप झूठ बोलते थे तो पकड़ में भी आ जाते थे। एक श्रोता ने लिखा है कि अपने पिताजी से बचपन में एक रुपए के लिए झूठ बोला था, वो मार पड़ी कि अभी तक याद है, जीवन भर याद रहेगा। और ऐसे ही जो बातें हैं वो आपको नैतिकता भी सिखाती हैं कि आगे चलकर आप ये सब बातें छोड़ देते हैं, जो डांट पड़ती है मार पड़ती है उससे आप अपने को समृद्ध करते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़ई वो भोजपुरी सिनेमा के इतिहास का सबसे पहला और मील का पत्थर माने जाने वाला गीत है। सन 1963 में रिलीज हुई फिल्म भोजपुरी फिल्म है शीर्षक गीत है। इसे महान गीतकार शैलेन्द्र ने लिखा था, चित्रगुप्त ने संगीत तैयार किया था। और बात शैलेन्द्र की चली है, इसी महीने में शैलेन्द्र की जयंती आ रही है। अगर आपको तारीख याद है शैलेन्द्र की जयंती की तो आप जरूर बताएं, इसी महीने में है। अब आगे बढ़ें और आपको सुनवाएं ये गाना, जरा बूझिए फिर एक बार गीतकार का नाम। फिल्म है जिद्दी।

जिद्दी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। हसरत जयपुरी के बोल थे और सचिन देव बर्मन का संगीत था। सभी श्रोताओं ने जवाब सही दिया, एक आध श्रोता ने गलत जवाब भी दिया। और हमने आपसे पूछा था शैलेंद्र के लिखे गाने के लिए कि इसी माह में उनकी जयंती है, इसका भी जवाब श्रोताओं ने सही दिया, 30 अगस्त। और बहुत सारे श्रोताओं से जब हम सवाल पूछते हैं तो ये भी कहते हैं कि भाई आपकी जानकारी बड़ी समृद्ध है। तो हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि हम तो विविध भारती सुनकर अपनी जानकारी को पुख्ता करते हैं, क्या बात है। और हम सब के लिए रेडियो एक मानक रहा है और पैमाना रहा है कि यहां से जो भी जानकारी दी जाती है वो सही होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन में सुख दुख, खुशी या गम खुद की किस्मत, अब कुछ पहले से तय है, नियति के परे कुछ भी नहीं, तभी तो वो हमें किसी अनजान से मिलाती है और ऐसे कि जैसे कभी अलग थे ही नहीं। संवेदनाओं के अंबार उमड़ते हैं जब उसके करीब या ख्यालों में खोते हैं। दुनिया में जैसे खुशी के एहसास के सिवा कुछ भी नहीं है। और मेरे ख्याल से इबारत पढ़कर इन्होंने ये अपनी बात लिखी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि हृदय में दुख का सागर उमड़ता है और मन वैराग्य से जुड़ता प्रतीत होता है, जो वियोग श्रृंगार के आध्यात्मिक भक्ति यानी लौकिक से अलौकिक की यात्रा की शुरुआत हो सकती है। ये भी इबारत से जुड़ी हुई बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि इन गानों को सुनते हुए मन बड़ा भावुक हुआ, क्योंकि बचपन की बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं। अब जरा सुनिए ये गाना और बताइए कि कौन है हीरो और कौन है हीरोइन फिल्म तेरे घर के सामने। इस गाने का भी जिक्र बहुत सारे श्रोताओं ने किया है।

तेरे घर के सामने फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज, शब्दकार हसरत जयपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन और कलाकार देव आनंद और नूतन। इसका भी जवाब श्रोताओं ने सही दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि सदाबहार और शानदार प्रस्तुति, आज आपने सुरीला सफर में फिल्मों के शानदार गीत सुनवाए और श्रोताओं की टिप्पणियां भी शामिल की। तो और बहुत सारे श्रोता लिख रहे हैं कि सुंदर गीतों से सजा ये कार्यक्रम, आभार आपका। दरअसल आभार आप सभी श्रोताओं का कि इस प्रोग्राम से जुड़े हुए थे। और अब अभी भी हमारे बहुत सारे श्रोता गानों की लिस्ट लिख रहे हैं और बहुत सारे गाने तो आज हमारे आपके बिल्कुल मैच हो गए। अब देखिए ये गाना भी आपके दिल के करीब है या नहीं। फिल्म अभिमान, जरा बताइए किस हीरोइन पर फिल्माया गया है ये गाना। संगीतकार का नाम बताइए और हीरोइन का नाम बताइए। फिल्म अभिमान।

अभिमान फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे सचिन देवबर्मन का संगीत था, जया भादुड़ी पर फिल्माया गया था ये गाना। हमारा सवाल था और सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब बहुत जल्द दिया, कम समय में दिया, सही दिया सचिन देवबर्मन, ये भी सही जवाब था। आज का सुरीला सफर प्रोग्राम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब आज का सफर बस इतना ही।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्पररी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंज वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कभी रंगमंच की तालियों ने जिनका हौसला बढ़ाया, तो कभी फिल्मों और चर्चित वेब सीरीज के दमदार किरदारों ने उन्हें हर घर तक पहुंचाया। एक ऐसे अभिनेता जो दर्शकों के दिलों में बसते हैं, गुल्लक के संतोष मिश्रा यानी अभिनेता जमील खान।
1: एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां।
0: कैसा रहा रंगमंच से कैमरे तक का उनका सफर, किससे होंगे, यादें होंगी, दिलचस्प बातें होंगी।
2: थिएटर करते करते ही सारी चीजें मेरी जिंदगी में आई हैं, चाहे वो वॉइस ओवर्स हो, चाहे वो एड्स हो, एड्स में एज एन एक्टर काम करने की बात हो।
0: सुनिए अभिनेता जमील खान के सफर की दास्तान, 1 सितंबर सेल्यूलॉइड के सितारे में ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

0: एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से एक अमिट छाप छोड़ी, रंगमंच पर अपनी कला से दर्शकों का दिल जीता, अपनी आवाज से अनगिनत किरदारों को पहचान दी।
1: मिलो जो तुम्हें बताए।
0: अपने सहज और सरल अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता, थिएटर आर्टिस्ट, कहानीकार और डबिंग आर्टिस्ट जॉय सेन गुप्ता।
2: जब आप कैमरे के सामने अभिनय करते हैं तो कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेती है आपकी शक्ल में, आपकी आंखों में, तो आपको वाचक अभिनय करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप साइलेंट अभिनय भी करते हैं तो कैमरा पकड़ लेती है।
0: आवाज, अभिनय और अनुभव से जुड़ी एक खास मुलाकात जॉय सेन गुप्ता के साथ 26 अगस्त आज के मेहमान ठीक 4 बजे विविध भारती पर।

सुल्ताना सुल्ताना तू न घबराना, तेरे मेरे प्यार को क्या रोकेगा जमाना, तोड़ के सब दीवारें तुझको ले।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली आपका नाम क्या है?
2: अरे ममता जी पहले नमस्कार कर लूं। ममता जी आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। और अब आपके मैं सवाल का जवाब देना चाहती हूं या पूछना चाहती हूं।
1: वो तो बता दिया आपने,
2: पर आप ये क्यों पूछ रही थी?
1: यही तो सवाल है कि क्यों पूछ रही थी कि मैं जानना चाह रही थी कि आप चौंकिए कि आखिर ये सवाल क्यों पूछा। हम तब चौंक जाते हैं जब कोई हमसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, बता दिया। आपके पिता का नाम क्या है, बता दिया। आपके पति का नाम क्या है, बता दिया। आपके सब कुंडली पूरी बता दी। लेकिन तब हमें चौकन्ना होना पड़ता है जब कहीं भी जाओ तो आपको बाध्यता के रूप में कहा जाता है कि आप अपने पति का नाम भी लिखो या फिर पिता का नाम लिखो, ठीक है वहां तक भी, और आपका सरनेम भी जरूरी है। फिर अगला सवाल आता है कि आपका

0: शादी के पहले क्या नाम था और शादी के बाद, तो शादी के बाद आपने नाम नहीं बदला, नहीं बदला, क्यों नहीं बदला? तो शादी के बाद सरनेम नहीं बदला, नहीं बदला, क्यों नहीं बदला? ये अक्सर सवाल होता
1: हम महिलाओं को इन, हाँ। इन सवालों का सामना करना पड़ता है।
0: पुरुषों को क्यों नहीं करना पड़ता?
1: पुरुष जवाब है।
0: तो आज हमारे लगता है कमेंट बॉक्स सखाओं से भरेंगे और हमारे सखा जवाब देंगे इसका।
1: हाँ, पता अगर... नहीं जवाब देंगे या फिर डर के मारे जवाब भी नहीं देंगे,
0: खामोश बैठ जाएंगे। तो ठीक है, सखिया सखा हमारे इनबॉक्स में, मतलब कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि क्या कारण है। तो असल में तो ये सदियों से परंपरा चली आ रही है कि पुरुष सत्ता समाज रहा है, लेकिन अब जब महिलाएं बाकायदा बराबरी से कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, बल्कि आगे चल रही हैं, आप शिक्षा व्यवस्था हो या और कोई क्षेत्र हो जहां महिलाएं आगे बढ़ रही हैं पुरुषों से भी आगे, तो फिर अभी भी उन सवालों से जूझने की क्या जरूरत है? तो उन सवालों से भी आगे बढ़ जाना चाहिए, है ना?
1: या फिर अगर कोई महिला यानी जो अभी युवतियां हैं वो चाहती हैं कि हम अपने मायके का नाम ही लगाएं, तो उसमें भी उन्हें इजाजत आराम से मिल जाना चाहिए या उनकी उनके लिए सहमति होना चाहिए। ऐसे नहीं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ना हो, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज का विषय है नारी की पहचान बने उसका अपना नाम।
0: बिल्कुल, और अपने नाम से पहचानी जाए ये हमारा मुद्दा है, लेकिन हमें इंतजार रहेगा कि हमारे श्रोताओं के क्या विचार है इस मामले में, खासतौर से इस मुद्दे का हमें इंतजार रहेगा।
1: साथ ही साड़ियों का संसार, इसमें आज हम बालारामपुरम साड़ी केरल के बारे में हम चर्चा करेंगे।
0: और शब्द हमारा विचार आप सभी के, मतलब हमारे श्रोताओं के, ईर्ष्या शब्द ऐसा है जिससे कोई वंचित नहीं रह पाता है। लेकिन ईर्ष्या अगर सहज होती है, सकारात्मक होती है, मान लीजिए कोई बहुत ऊंचाई पर जा रहा है और देख कर लगता है कि हम भी इसके इसी तरह आगे बढ़े, तो ये एक ठीक ईर्ष्या है। लेकिन ईर्ष्या में जब जलन कुढ़न आ जाती है, आपकी मानसिक अस्वस्थता आ जाती है, वहां पर ईर्ष्या दुखद हो जाती है, तकलीफ देह हो जाती है।
1: यानी कि अगर आपने बहुत अच्छी साड़ी पहनी है तो मुझे थोड़ी सी ईर्ष्या हो जाएगी, काश मेरे पास भी ऐसी साड़ी, तो ये ईर्ष्या चल
0: सहज ईर्ष्या है
1: कि चलो हम भी ले सकते हैं। ममता जी खुद ही कहें कि सोनाली पहन लेना किसी दिन,
0: और ये कहें कि आप जो लड्डू खा रही हैं बहुत अच्छे लड्डू बनाती हैं। तो ये सब ऐसी तारीफ जो होती है एक सहज ईर्ष्या होती कहलाती है। लेकिन जब ईर्ष्या रूप ऐसा ले ले,
1: विकराल रूप ले,
0: विकराल रूप ले ले और आपके पीछे मतलब बुरा रूप ले ले, तो फिर ठीक नहीं होता। तो इसमें हमारे श्रोता बताएं कि उनके अपने क्या अनुभव हैं, क्या कभी ऐसे लोगों से सामना पड़ा कि जो ईर्ष्या के कारण जिनसे आपके रिश्ते खराब हो गए हों, या फिर ईर्ष्या के कारण आपका कोई नुकसान पहुंचा हो, आपके करियर में बाधा पहुंची हो, ईर्ष्या तो बताएं।
1: हमारे बहुत सारे साथियों ने, बहुत सारी सखियों ने इस विषय पर लिखा है, पर हर बार ऐसा ही होता है कि हमारे साथी लिखते हैं पर अपने बारे में नहीं लिखते हैं,
0: दूसरों के बारे में।
1: उनके क्या विचार है या उनके क्या उदाहरण है, उन्हें कैसे जूझना पड़ा इस शब्द से या इस बात से, अपने बारे में लिखे तो ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा। और व्यंजन, रक्षाबंधन के विशेष व्यंजन, जैसे महाराष्ट्र की बात की जाए, यहाँ पर कच्चे नारियल के व्यंजन बनते हैं जिसे नारली भात कहते हैं या फिर नारियल की बर्फी कहते हैं। तो आपके क्षेत्र में कौन से, आपके घर में कौन से व्यंजन बनते हैं और उसकी विधि लिखकर भेजिए। बहुत सारे श्रोताओं ने भर भर के मिठाइयों के नाम लिखकर भेज दिए हैं, पर उसके विधि लिखे ना, तो हम भी लोगों को पढ़ के सुनाए तो उनके घर में भी
0: हो सकता है। इसी रक्षाबंधन पर जो 28 तारीख को है, तो उस रक्षाबंधन पर वही मिठाई बन जाए जो हमारे श्रोता लिख भेजे। और ओणम का पर्व और ईद ए मिलाद, तो ईद ए मिलाद के बारे में हम बात करेंगे, ओणम के बारे में बात करेंगे। फिलहाल एक गाना सुनवाते हैं ये।

0: ये गाना हमारे श्रोता सुन रहे थे और सोनाली, आज ईद मिलाद है और इस दिन पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था और इनके जन्मदिन के साथ साथ इनके स्मृति दिवस के रूप में भी आज के दिन को याद किया जाता है।
1: और ईद मिलाद का सबसे महत्वपूर्ण संदेश प्रेम, दया और इंसानियत का है और पैगंबर मोहम्मद ने लोगों को सत्य, सदाचार, करुणा और जरूरतमंदों की सहायता करने की सीख दी थी और यही अपने व्यवहार में लाने का संदेश था कि विनम्रता और मानवता को स्थान देने की प्रेरणा ये दिन देता है।
0: बिल्कुल, इस दिन कई स्थानों पर धार्मिक सभाएं होती हैं, जुलूस और सामूहिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं और जरूरतमंदों की मदद की जाती है।
1: और आज एक और खास दिन है, आज ओणम है और ओणम केरल का प्रमुख और अत्यंत लोकप्रिय त्योहार है। प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और समृद्धि का प्रतीक ये दिन माना जाता है।
0: बिल्कुल, ओणम के अवसर पर घरों की साफ सफाई की जाती है जो हर त्योहार पर की जाती है और आंगन में रंग बिरंगे फूलों से सुंदर सजाया जाता है और पुक्कलम सजाया जाता है,
1: उसे जो फूलों की रंगोली होती है उसे पुक्कलम कहते हैं।
0: और पूरा वातावरण उत्सव और उल्लास से भर उठता है।
1: और ऐसा कहा जाता है कि ओणम का संबंध राजा महाबली से जुड़ी पौराणिक कथा से है। मान्यता है कि राजा महाबली अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे और उनके राज्य में सुख समृद्धि थी। माना जाता है कि ओणम के समय महाबली अपनी प्रजा से मिलने धरती पर आते हैं, इसलिए लोग उनका स्वागत बड़े प्रेम और उत्साह से करते हैं।
0: ओणम हमें केवल उत्सव मनाना ही नहीं सिखाता बल्कि प्रेम सिखाता है, समानता की भाव, भाईचारे और प्रकृति के सम्मान का संदेश भी देता है। ओणम फूलों की तरह अलग अलग रंगों और विविधताओं से भरा यह पर्व हमें मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है। ओणम केरल की संस्कृति, परंपरा और खुशहाल जीवन का सुंदर प्रतीक भी माना जाता है।
1: और ये पर्व का आकर्षक हिस्सा ओणम सद्या है। ममता जी, वो जो थाली होती है ना, केले के पत्ते पर सारे व्यंजन परोसे जाते हैं, अनेक पारंपरिक व्यंजन, उसमें परिवार और समाज एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। साथ ही नौका दौड़, पारंपरिक नृत्य गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम ओणम के उत्सव को और भी जीवंत बनाते हैं।
0: बिल्कुल सही करें। और केले के पत्ते की बात से याद आई कि अभी यहाँ मुंबई में या कई शहरों में ऐसे कई रेस्टोरेंट है जहाँ पर केले के पत्ते पर खाना मिलता है तो कितना स्वाद बढ़ जाता है।
1: बहुत स्वाद बढ़ जाता है, यानी वो देख के ही हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं। मन प्रसन्न हो तो खाना हमें अच्छा ही लगता है।
0: बिल्कुल, और जब गाने सुनते हैं तब भी प्रसन्नता भर जाती है। सुनते हैं ये गाना चोरी चोरी फिल्म का।

0: सोनाली जी, वैसे महिलाओं से अगर पूछा जाए कि आपको कौन सी साड़ी पसंद है तो बताना मुश्किल हो जाएगा,
1: बहुत मुश्किल हो जाएगा ये कहूँ या वो कहूँ, इसकी ये खासियत है तो उसकी
0: वो खासियत है, यहाँ जाने के लिए वो साड़ी, फलानी जगह जाने के लिए दूसरी साड़ी चाहिए। तो साड़ियों का भरमार हो लोगों के पास तो भी साड़ी से दिल नहीं भरता है
1: और भरना भी नहीं चाहिए।
0: साड़ी दरअसल अपने देश की परंपरा है और पारंपरिक साड़ी, पारंपरिक पोशाक भला किसे नहीं अच्छा लगता है। तो इतने तरह की साड़ियां हैं कि जिसमें चूज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आजकल लोग साड़ियों के प्रकार के बारे में बहुत ही जागरूक हो गए हैं कि फला साड़ी ही हमें फला मौके पर पहननी है, और हम इसीलिए साड़ी के बारे में हर हफ्ते लेकर आते हैं जानकारियां थोड़ी बहुत। आज बालारामपुरम साड़ी के बारे में हम जानकारी देंगे,
1: जो ओणम का त्यौहार है तो क्यों ना हम केरल
0: की बात करें। तो बताइए क्या खासियत है।
1: बालारामपुरम साड़ी केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के बालारामपुरम क्षेत्र की प्रसिद्ध पारंपरिक हथकरघा साड़ी है और लगभग 200 वर्षों से चली आ रही इसकी बुनाई परंपरा का संबंध त्रावणकोर के राज परिवार से माना जाता है।
0: और इस साड़ी में प्राकृतिक बिना रंगे और सूती धागे का प्रयोग किया जाता है। इसकी महीन बुनावट इसे हल्का और आरामदायक बनाती है। इसकी सबसे पहचाने जाने वाली जो विशेषता है वो ये है कि किनारे और पल्लू पर दिखाई देने वाली सुनहरी जरी, जिसे केरल में कसावू कहा जाता है, ये होती है।
1: यानी इसका कलर सिर्फ क्रीम, ऑफ व्हाइट या प्राकृतिक सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर सुनहरा बॉर्डर होता है और कहीं कहीं छोटे बुट्टे और रंगीन धागों का प्रयोग भी मिलता है और पारंपरिक पिट लूम और हाथ से नियंत्रित बुनाई इसकी विशिष्ट पहचान है। कुछ डिजाइनों में बुनाई के कारण बॉर्डर पर हल्की उभरी हुई धारियां भी दिखाई देती है।
0: और बालारामपुरम साड़ी को जो पंजीकृत किया जाता है
1: इस
0: प्रमाण पत्र की तारीख 19 मार्च 2009 है
1: और उन्हें GI टैग मिला हुआ है।
0: और इसके अलावा बालारामपुरम की बुनाई परंपरा को त्रावणकोर के महाराजा बालाराम वर्मा के समय से जोड़ा जाता है और राजपरिवार के लिए महीन वस्त्र तैयार करने के उद्देश्य से तमिलनाडु के तिरुनेलवेली क्षेत्र से कुशल बुनकर परिवारों को यहां लाया गया था और धीरे धीरे यही कला बालारामपुरम की सांस्कृतिक पहचान बन गई।
1: और ये जो साड़ियां हैं ना ममता जी, बालारामपुरम साड़ी विशेष रूप से ओणम, विवाह, मंदिर दर्शन और अन्य शुभ अवसरों पर पहनी जाती है। इसकी सादगी और सुनहरी किनारे के कारण पारंपरिक होने के साथ साथ बेहद सुरुचिपूर्ण दिखाई देती है।
0: और बालारामपुरम साड़ी में केरल की धरती की सादगी भी होती है, सुनहरी कसावों में उसकी सांस्कृतिक समृद्धि भी झलकती है, तो इसलिए ये साड़ी बेहद खास होती है और केरल के लोग तो इसे बहुत पसंद करते हैं।
1: और है ना, वो ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी है, फिर गोल्डन कलर के गहने हैं और उसके बाद में लंबी सी चोटी, उसमें गजरा लगा के, वो सफेद कलर का तिलक लगा के जो महिलाएं दिखती है इतनी सुंदर लगती है। और फिर अगर सामने केले के पत्ते पे व्यंजन हो और इसे बैठ के खाया जाए तो कितना सुंदर वो
0: क्या बात है, वो आभा अलग ही होती है और एक गरिमामान व्यक्ति तो लगता है देखकर। अब एक गाना सुनवाते हैं और दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं।

0: ममता जी, हमारे बहुत सारे साथियों ने ईर्षा शब्द हमारा विचार आपके में बहुत सारे कमेंट्स लिखकर भेजे हैं। एक साथी कहते हैं, ईर्षा मन की वो आग है जो दूसरों को नहीं सबसे पहले हमें ही जलाती है। किसी की सफलता से जलने के बजाय उससे प्रेरणा ले और अपने रास्ते पर आगे बढ़े। अगर मन में ईर्षा नहीं होगी तो जीवन बहुत अधिक सुंदर होगा। ये इन्होंने बात बहुत सही लिखी। साथ ही एक साथी कहते हैं कि जलन को दूसरे शब्दों में ईर्षा कहा जाता है। जलन का स्वभाव अग्नि तुल्य है। जैसे अग्नि अपने समीप में आई वस्तु को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ईर्षा मानव की बुद्धि को नष्ट कर देती है। दूसरे की प्रगति को देख नहीं सकना जलन की भावना है। ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। यही नकारात्मक सोच उनके पतन का कारण बनता है।
1: बिल्कुल इस तरह की ईर्ष्या न करें। एक हमारी सखी है जो लिख रही है कि कभी भी ईर्ष्या को कम करके नहीं आंकना चाहिए। आपके सबसे करीबी शुभचिंतक भी शायद आपको खुद से ज्यादा सफल होते देखकर ईर्ष्या से भर उठते हैं। जब कोई नकारात्मक ईर्ष्या से प्रेरित होता है तो वो सफल व्यक्ति की कामयाबी के प्रति हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करता है। ईर्ष्या एक ऐसा दानव है जो अलग अलग मौकों पर अप्रत्याशित ढंग से उभरता है। सवाल तो यह है कि आप ईर्ष्या करना छोड़ सकते हैं, लेकिन जब दूसरे आपसे ईर्ष्या करें तब आप क्या करें?
0: जवाब दीजिए।
1: तब बस और कोई रास्ता नहीं होता है कि आप उन्हें नजरअंदाज करें। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि अगर ईर्ष्या करने वाले से आप लड़ने भिड़ने गए, बहस करने गए, तो और मुसीबत में
0: हमारे हाथ जल जाएंगे।
1: और एक हमारी और सखी लिख रहे हैं कि जलन को दूसरे शब्दों में ईर्ष्या कहा जाता है। जलन का स्वभाव अग्नि तुल्य है। जैसे आपने पढ़ी तो नहीं
0: जी,
1: तो जैसे अग्नि अपने समीप से आई वस्तु को जलाकर आग बना देती है, वैसे ही ईर्ष्या मानव की बुद्धि को नष्ट कर देती है।
0: एक साथी ने लिखा है कि ईर्ष्या एक ऐसा नकारात्मक मानसिक भाव है जो मनुष्य को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खोखला कर देता है। ईर्ष्या का अर्थ है दूसरों की प्रगति, सुख या ऐश्वर्य को देखकर बिना किसी वास्तविक कारण के खुद दुखी होना। यानी ये जो है ना, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, खुद हमेशा दुखी ही रहते हैं। और जब हम दुखी रहेंगे ना, तो हमारा जो मन है, शरीर है, वो हमेशा निराशा का घर बन के रह जाएगा। हम आगे बढ़ ही नहीं सकते।
1: बिल्कुल। कई बार तो ईर्ष्या इतनी मतलब जरा जरा सी बात में होती है कि दो दोस्त हैं और तीसरा आपको देख रहा है, तो दोस्तों के बीच प्रेम स्नेह देखकर भी लोग ईर्ष्या करते हैं कि अरे देखो
0: कितनी अच्छी दोस्ती है
1: हमारे पास नहीं है। ये किसी के घर को देख के ईर्ष्या होती है, किसी की कामयाबी देखकर ईर्ष्या होती है, किसी की प्रतिभा देखकर ईर्ष्या होती है। मतलब ईर्ष्या के कुछ कारण नहीं है,
0: कोई परिभाषा ही नहीं है।
1: जरा जरा सी बात पे लोग ईर्ष्या करते हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि ईर्ष्या का तात्पर्य है पराई उन्नति से दुखी होना। ये एक ऐसा अवगुण है जो मनुष्य को आत्मविनाश की ओर धकेल देता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति सदैव अशांत रहता है और दूसरों के अहित की कामना करता है। भाई ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए।
0: एक साथी कहते हैं ममता जी कि बहुत से लोगों की ये फितरत होती है कि कोई भी उनका अपना उनसे किसी भी क्षेत्र में आगे निकल जाए तो उनको सहन नहीं होता और वो उसको पीछे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो ये ईर्ष्या नहीं, जलन होती है।
1: तो बस ये ईर्ष्या जलन दोनों सखियां हैं, बहने हैं, इनसे दोनों से दूर रहना चाहिए। और हमें दूर नहीं जाना है, करीब आना है सखी सहेली के। लेकिन एक ब्रेक के बाद

0: विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली और बात चल रही थी ब्रेक पे जाने से पहले ईर्ष्या की कि किस बात पर। अच्छा सोनाली जी बताइए, आपको कभी किसी से ईर्ष्या हुई है?
1: पता नहीं, मुझे तो ऐसे ईर्ष्या होती नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी मिलती है ममता जी अगर कोई आगे जाता है
0: और अपना कोई खास तौर से अगर आगे बढ़ता है तो खुशी मिलती है। लेकिन हाँ, कई बार बचपन में पढ़ाई लिखाई में जो सहेलियां होती थी उन्हें देखकर लगता था कि काश ये गुण हमारे पास भी होता। लिखने की जो ताकत क्षमता होती थी, पढ़ने में जो तेज होती थी, तो लगता था कि हम भी इतने मार्क्स पा जाएं तो अच्छा।
1: या फिर कोई हमारी सहेली टीचर की कोई फेवरेट हुआ करती थी, तब लगता था अरे ये हमारे टीचर इन्हीं का नाम लेती है
0: और हमारा नहीं लेती है। ये एक सहज ईर्ष्या होती है। बचपन की जो ईर्ष्या होती है सहज होती है, लेकिन बड़े होने पर जो किसी की कामयाबी पर जलन हो वो ठीक नहीं होता है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ईर्ष्या करना इंसान की एक कमजोरी ही नहीं बल्कि एक बुरा अवगुण है। कुछ लोग ईर्ष्यालु होते हैं, उनकी आदत सुधारने पर भी सुधरती नहीं है। और एक श्रोता ने और लिखा है कि ईर्ष्या एक दुर्गुण है। आपके पास जो टिप्पणी है जरा पढ़कर सुनाइए।
1: एक साथी कहती है, मनुष्य है तो हमें भी अपने ईर्ष्या द्वेष का सामना ही करना पड़ता है, और वो भी बचपन में। कभी किसी को गुब्बारे घड़ी आदि मिल गए, हमारे पास नहीं रहे, किंतु जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे ऐसी भावनाएं प्राय कम होती चली जाती है। अंत में स्वीकार कर लिया जाता है कि जय ही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। ये तो बहुत सही है। एक साथी कहते कि शब्द हमारा विचार आपके ईर्ष्या भाई। ईर्ष्या एक मानवीय गुण है, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, किंतु षड मनोविकारों काम क्रोध लोभ मोह मद ईर्ष्या द्वेष में इनकी गणना अवश्य है और इससे बचते रहने का निर्देश भी है। यद्यपि ईर्ष्या किसी के प्रति उत्पन्न हुए द्वेष के मानसिक उद्वेग का ही परिणाम है, इससे दूर रहने के लिए उद्वेग को यहीं पर रोकना उचित है।
0: वही तरह तरह की बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारी सखी है कि भाई ईर्ष्या तो इतनी भी नहीं चाहिए कि मेरी सामने वाले पड़ोसन तो इतनी ईर्ष्या करती है। जब मैं सवेरे नाश्ता चाय बनाऊं और हमारे बुढ़ऊ अगर उसे आंगन में क्या समझ में नहीं आया कि आंगन में गिरे आम के पत्ते सहेजते झाड़ू मारते दिखे, मतलब घर के बुजुर्ग की बात है कि झाड़ू मारते दिखे तो वो भी आंगन में झाड़ू मारने निकल पड़ती है चाहे आंगन में कुछ भी न हो। भाई तो गजब की ईर्ष्या। अच्छा ऐसी बहाने साफ सफाई
1: हो जाएगी।
0: एक सखी है जो लिख रही कि ईर्ष्या या जलन भाई बहनों में भाई भाई या पड़ोसियों की तरक्की से रहन सहन में हो जाती है। दरअसल ये ईर्ष्या स्वाभाविक और सहज होती है। ईर्ष्या करना इंसान की एक कमजोरी नहीं बल्कि एक बुरा अवगुण है, और बहुत सारे श्रोता इस तरह की बात लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ईर्ष्या विषय पर आप लोग बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रही हैं। ईर्ष्या विषय पर इसमें नकारात्मक ईर्ष्या का जिक्र किया गया है। क्या ईर्ष्या सकारात्मक और नकारात्मक भी होती है? क्या उदाहरण देकर समझा सकती हैं आप? भाई देखिए, ये कोई पाठशाला तो है नहीं कि हम आपको समझा सकें। हम यहाँ पर ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर श्रोताओं की टिप्पणियों के साथ हम अपनी बात अपने विचार साझा करते हैं आपसे। तो हम अपने विचार यही साझा कर रहे हैं कि ईर्ष्या जब सकारात्मक होती है तो ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी की कामयाबी को देखकर लग रहा है कि काश हम भी इतनी ऊंचाई तक पहुंच पाते, ऐसा कुछ कर पाते, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी।
1: और अगर हम मेहनत करने लग गए
0: तो फिर वो सकारात्मक होगा। और अगर हम सिर्फ जलते कुटते रहे तो वो नकारात्मक ही होगा।
1: घर में बैठे रहे और बस जलते ही रहे, कुछ मेहनत ही नहीं की हमने,
0: बिल्कुल
1: तो वो नकारात्मक हो जाती है।
0: तो ईर्ष्या से जुड़ी हुई तमाम बातें हमारे श्रोता लिख रहे हैं, लेकिन ये नहीं लिखा कि कब उन्हें किससे ईर्ष्या हुई।
1: और कई व्यंजन भी नहीं लिखे।
0: हमें इंतजार है, अभी तो प्रोग्राम बाकी है, व्यंजन तो लिख भेजेंगे।
1: हाँ, कि आपके घर में कौन सी मिठाई बनती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और ईर्ष्या कई बार हमारे श्रोताओं ने यह भी लिखा कि महिलाओं में ज्यादा होती है। महिलाओं में तब होती है जब उसके साथी को शेयर करने की कोई कोशिश करे तो महिला निश्चित रूप से लड़ पड़ती है। और बहुत सारी फिल्में भी इस पर बनी है,
1: इस विषय पर बनी है
0: कि जब दो महिलाएं आपस में ईर्ष्या करती हैं, ये कहने की बात है। दरअसल ईर्ष्या तो पुरुष में भी होते हैं। ये ऐसा गुण है जो सब में पाया जाता है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक,
1: छोटे या बड़ी मात्रा में सब में होता है।
0: फिलहाल सुनते हैं गाना।

0: कहाँ खो गई से सोनाली जी।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं, ईर्ष्या 4 दिनों की जिंदगानी है और दूसरों से ईर्ष्या करके व्यर्थ ही अपने शरीर को नुकसान क्यों पहुंचाया जाए। हर किसी को अपने नसीब का मिलता है
0: और कर्मों का।
1: और एक सखी ने भी ये भी लिखा है ममता जी कि कुछ चाहत में मन में रहती है तो ये लगता है कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों। कुछ बातों को देखकर ऐसा लगता है पर ईर्ष्या नहीं होती।
0: ये सहज बात होती है, मन में आती है, आए विचार और खत्म हो जाए तो कोई परेशानी का सबब नहीं है। लेकिन बहुत देर तक आपको तकलीफ देती रहे तो फिर बात गलत हो जाती है। वैसे आज हम एक और जरूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, वो है नारी की पहचान। तो स्त्रियों की पहचान के साथ हमेशा तमगा रहता है, पति की पहचान से फलाने की वाइफ या उनके सरनेम से ही जाना जाता है, ये फिर पहले पिता के नाम से बच्चों की मतलब लड़कियों की पहचान होती है, फिर पति के नाम से, फिर बाद में संतान के नाम से फलाने की मम्मी। तो ये जो है अब आज के युग में महिलाएं चाहती हैं कि उन्हें अपना नाम खुद
1: के नाम से पहचान
0: नाम से पहचाना जाए, उन्हें अपना सम्मान खुद मिले, चाहे बेटी हो, बहन हो, पत्नी, बहू, माँ जैसे अनेक रिश्ते वे निभाती हैं। इन रिश्तों से उसे प्यार और सम्मान तो मिलता है लेकिन इन रिश्तों के बीच उनकी अपनी पहचान कहीं गुम हो जाती है। एक महिला की पहचान केवल किसी की पत्नी, बेटी, बहू के रूप में नहीं बल्कि उसके अपने नाम और व्यक्तित्व से भी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने ममता जी। और हमारे समाज में अक्सर विवाह के बाद महिला की पहचान उसके पति के नाम से होने लगती है। कई बार उनकी उपलब्धियां, उनकी प्रतिभाएं भी परिवार के रिश्तों के पीछे छिप जाती है, जबकि उन्होंने अपनी शिक्षा, मेहनत और संघर्ष से जो पहचान बनाई उसका श्रेय और सम्मान उसके अपने नाम के साथ जुड़ना चाहिए। और आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, जैसे शिक्षा कह लीजिए, चिकित्सा, विज्ञान, प्रशासन, खेल, कला, साहित्य, व्यापार और राजनीति जैसे अनेक क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। वे अपने कार्यों से परिवार और देश का नाम रोशन कर रही है। ऐसी महिलाओं को उनके अपने नाम से पहचानना और सम्मान देना हम सभी की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अपना नाम केवल पहचान बताने का माध्यम नहीं बल्कि ये व्यक्ति के अस्तित्व, आत्मसम्मान और स्वतंत्र व्यक्तित्व का प्रतीक भी है। जब किसी महिला को उसके नाम से पुकारा जाता है तो उसकी उपलब्धियों को उसके नाम से जब जोड़ा जाता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास का संचार होता है और सम्मान की भावना भी मजबूत होती है। तो अमूमन यही कहा जाता है ना कि जैसे पति का नाम लेकर उनकी वाइफ, या जब दोनों, जबकि कई बराबर से प्रतिभाशाली हैं और बराबर से उनका करियर आगे बढ़ रहा है, कई बार महिलाएं दो कदम आगे भी होती हैं अपने पति से, तो भी उनकी वाइफ के नाम से ही उन्हें पुकारा जाता है, उनके नाम से उन्हें नहीं जाना जाता है। ये कहीं उनके दुख का सबब भी होता है।
1: पर इसका अर्थ ये नहीं ना ममता जी कि महिला अपने पारिवारिक रिश्तों से दूर हो जाए। वो अपने सभी रिश्तों को बड़ी ही गरिमा के साथ निभाते हुए अपनी अलग पहचान रखना चाहती है।
0: सही कह रहे हैं। और रिश्ते जीवन को सुंदर भी तो बनाते हैं लेकिन अपनी पहचान जीवन को अर्थ देती है। अब जरूरी नहीं कि वो बहुत बड़ा काम करें, वो अपनी रुचि और प्रतिभा के अनुसार कोई भी क्षेत्र चुन सकती हैं महिलाएं। शिक्षा है, संगीत, लेखन, कला, व्यवसाय, समाज सेवा, खेल या कोई और हुनर, इन सब के लिए खुद को कोशिश भी करनी पड़ती है कि महिलाएं अपनी पहचान खुद बनाएं। कई बार कुछ महिलाओं को एक सहारे की हमेशा जरूरत होती है, अमर बेल के रूप में ही जाने जाने में उनको भी सुख मिलता है कि वो अपने पति के पति के साथ मतलब पति के नाम से ही जाना जाना अच्छा लगता है। जबकि अगर उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर प्रतिभा है तो खुद अपना रास्ता चुने और अपने उस चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़े।
1: और जब कोई महिला अपने मेहनत से सफलता प्राप्त करती है तो उसके परिवार के साथ साथ उसका अपना नाम भी मान से लिया जाता है। यही आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की सच्ची मिसाल है। आजकल बहुत सारी महिलाएं विवाह के बाद भी उन्हें उनके मायके के नाम से पहचानने की इच्छा रखती है। इस बात को लेकर परिवार के लोगों ने भी उनकी इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें उनके नाम से पहचानने का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए। हालांकि थोड़ा अभी जमाना बदल रहा है, आजकल की जो युवतियां हैं वो अपना मायके का ही नाम रखती है अपने सारे इसमें डॉक्यूमेंट्स में, तो उन्हें इस बात को लेकर रोक टोक नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। अब एक गाना सुन लेते हैं फिर और बातें करते हैं।

0: ये गाना हमारे श्रोता सुन रहे थे और बात हम कर रहे थे कि स्त्रियों को उनके पहचान से, उनके नाम से जाना जाना चाहिए, मतलब उनके नाम से उनकी पहचान होनी चाहिए। हमारे बहुत कम श्रोताओं ने इस मुद्दे पर लिखा है और जिन्होंने लिखा उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचा रहे हैं। और ये तो अनुभव की बात है कि आपने कहां कहीं इस तरह के रिश्तों को देखा है। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि शादी विवाह के बाद बेटी की पदवी बदल जाती है न कि नाम, जैसे कि कन्या का नाम शीला है तो विवाह के बाद सरनेम बदल गया, यहां हुआ तो उसका नाम शीला ही रहेगा लेकिन पदवी दीक्षित की जगह, मतलब अगर पांडे परिवार है तो पांडे हो जाएगा। ये वैदिक परंपरा के अनुसार पाणि ग्रहण संस्कार के परिणाम से ही होता है न कि अपने मनमर्जी से। ये दो के एक होकर ही जीवन जीते रहने के प्रक्रिया स्वरूप बंधन का द्योतक है, जिससे आपसी सहमति, सहयोग और सद्भाव बढ़ते रहने की बात है। तो यहां पर उल्टा भी हो सकता है, अगर आपसी सद्भाव सहयोग होता है तो आप उलट भी सकते हैं
1: जी,
0: है ना। तो ये हम लोगों की, ये आप अपनी सोच की बात है कि हम कई बार चाह कर भी, मतलब अगर लड़कियां चाहती हैं आगे बढ़ना चाहती हैं महिलाएं, तो भी उनको हम एक दायरे में कैद करना चाहते हैं।
1: एक हमारी साथी ने लिखा है ममता जी, वो हम टिप्पणी पढ़ रहे हैं, नारी जब अपनी शिक्षा, हुनर और आत्मविश्वास से आगे बढ़ती है तो अपने फैसले स्वयं लेना सीखती है, किसी विशेष क्षेत्र में नाम कमाती है तब उसका नाम उसकी पहचान बनता है। रिश्ते नारी के जीवन को समृद्ध करते हैं लेकिन उसकी पहचान केवल रिश्तों तक सीमित नहीं होना चाहिए। आज घर संभाल

0: करने वाली महिला भी अपनी कला, पाक कला, लेखन, सामाजिक सेवा, राजनीति, ब्लॉगर या किसी हुनर के माध्यम से अपने अलग पहचान के माध्यम से नाम कमा रही है।
1: हमारे एक और श्रोता लिख रहे हैं कि नारी की पहचान केवल रिश्ते से नहीं बल्कि उसके अपने नाम, व्यक्तित्व और उपलब्धि से होनी चाहिए। वो बेटी, बहन, पत्नी या माँ के होने के साथ साथ एक स्वतंत्र व्यक्तित्व भी है। उनके सपनों, विचारों और मेहनत को सम्मान मिलना चाहिए। जब नारी शिक्षा, आत्मविश्वास और प्रतिभा के बल पर अपनी पहचान बनाती है तो उसे उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन ये बातें हम अपने घर में करते हैं, लेकिन दूसरों के घर में करते हैं दूसरों के लिए, लेकिन अपने घर में जब बारी आती है तो हम
0: पीछे
1: हट जाते हैं, सोचते हैं कि नहीं ठीक है जैसी परंपरा
0: जो चल रहा है वो अच्छा है।
1: जी,
0: एक सखी ने लिखा है ममता जी कि नारी की पहचान बने उसका अपना नाम, ये विषय रोजमर्रा के विषय से अलग लगा, मुझे ये विषय बहुत अच्छा लगा। अक्सर नारी को या तो पति के नाम से या पिता के नाम से जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नारी की पहचान उसका अपना नाम होना चाहिए, इसका अपना एक आत्मसम्मान होना चाहिए। अक्सर होता है कि हम पति के नाम से नारी को जानते हैं, एक नारी की पहचान उसके अपने नाम से होना चाहिए, उसके कर्मों से होना चाहिए और उसके अपने स्वभाव से होनी चाहिए, ना कि उसके पति, पिता या परिवार के स्वभाव या परिवार के रहन सहन के तरीकों से होना
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: सही कहा। तो अगर इन्हें विषय अच्छा लगा तो इस मुद्दे पर हम कभी और चर्चा करेंगे और तब हम चाहेंगे कि हमारे श्रोता इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। फिलहाल एक गाना सुनवाते हैं।

0: पेइंग गेस्ट फिल्म का ये गाना था और बात चल रही थी गाने से पहले नारियों की पहचान की। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आजकल की नारियां तो आगे बढ़ रही हैं और अपने नाम से पहचानी भी जा रही हैं, चाहे वो खेलकूद हो या फिर आकाश में उड़ना हो, ट्रेन चलाना हो। नारी की सबसे सुंदर पहचान सिर्फ किसी रिश्ते से नहीं, उसके अपने नाम से होनी चाहिए। बेटी, पत्नी, माँ, बहन और भी बातें इन्होंने लिखी है जो हम पहले कर चुके हैं।
1: और अब इतना

0: इतना अच्छा विषय है तो क्यों ना एक मिठाई की बात हो जाए।
1: बिल्कुल वो तो
0: काजू कतली बनाने की सामग्री लिखकर भेजी है एक श्रोता ने। काजू 2 कप साबुत या टुकड़े में, चीनी 1 कप, पानी आधा कप, देसी घी आधा छोटा चम्मच, इलायची पाउडर, गुलाब जल आधा छोटा चम्मच। काजू कतली बनाने के लिए काजू का पाउडर बनाए, काजू को मिक्सी के जार में डाले, मिक्सी को लगातार न चलाए, इसे पल्स मोड पर रुक रुक कर कुछ सेकंड के लिए चलाए ताकि काजू तेल न छोड़े। पीसे हुए पाउडर को बारीक छन्नी से छान ले, जो मोटे टुकड़े बचे उन्हें दोबारा मिक्सी में पीसकर छान ले। चाशनी तैयार करें, एक भारी तले की कढ़ाई में चीनी और आधा कप पानी डालें, मध्यम आंच पर चीनी को पूरी तरह घुलने दे और चाशनी को 3 से 4 मिनट तक पकने दे। चाशनी की एक तार की कंसिस्टेंसी, एक तार बनाना है उसे चेक करे। अब मिश्रण पकाए, गैस की आंच धीमी करे, छना हुआ काजू पाउडर और धीरे धीरे चाशनी में डालते जाए, इसे लगातार चलाते रहे ताकि गांठें ना पड़े। मिश्रण को तब तक पकाए जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए और कढ़ाई ना छोड़ने लगे, लगभग 5 से 6 मिनट तक। अब इसमें थोड़ा सा घी और इलायची पाउडर डालकर गैस बंद कर दे। अब इसको गूंथना है, मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दे ताकि आप इसे छू सके। इसे बटर पेपर या चिकनी प्लास्टिक शीट पर रखें और हल्के हाथों से तब तक मस ले जब तक चिकना और आटे जैसा ना, डो जैसा ना हो जाए। बेलन में थोड़ा सा घी लगाकर इसे अपनी पसंद की मोटाई में बेल ले। शीट को पूरी तरह से ठंडा होने दे, उसके बाद चाकू की मदद से डायमंड शेप में काजू कतली काट ले और खिलाए।
1: क्या बात है, तो भाई ये मिठास घुली रहे और इसी मिठास को घोलते हुए हम एक हमारे पास टिप्पणी आई, हमारे आकाशवाणी परिवार के वरिष्ठ सदस्य हैं जिन्होंने टिप्पणी की है कि आज का ये प्रोग्राम बल्कि इस ट्रांसमिशन के लिए पूरा लिखा है इन्होंने और टिप्पणी भेजी है कि प्रोग्राम बेहतर जा रहा है, तो शुक्रिया अदा करते हैं उनका और आभार व्यक्त करते हैं। अब क्या किया जाए, कुछ बोले बतिया या गाना सुनवाए?
0: आप सुनवा दे,
1: सुनवाते हैं।
2: Okay.

0: पक्के पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

जब कोई कांवरिया महादेव को भोले बम रूप में पुकारता निहारता हुआ अग्रसर होता है, तब महादेव का मन प्रसन्नता से खिल उठता है।